0: की इंटरेस्ट रेट है ते पेमेंट कदों स्टार्ट होंगी है?
1: हाँ जी, अब ये देखिए कि कोई भी लोन बिना गारंटी के, चाहे पर्सनल है लाइक, नहीं मिलता। बट यहाँ पे गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है, बैंक नहीं दे रहा, तो ये लोन बिना गारंटी के है। आपको ये गवर्नमेंट दे रही है लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। आप स्किल डेवलप कर रहे हैं, आप पीआर है, सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, अपना घर का खर्चा चला पाए, उस पैसे को आप कहीं भी कैसे भी खर्च कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर। तो आप हमें कॉल करें, प्रॉपर ऑफिस है, 8 साल में हम इतने लोगों को, हजारों लोगों को असिस्ट कर चुके हैं, बाल सफेद हो गए हैं, कोई भी चालाकी या मीठी बातें नहीं है।
0: हाँ अच्छा, इतने लोगों को हेल्प कर चुके, बाल सफेद हो गए आपके? अच्छा
1: हाँ जी, हाँ जी, लग 34 ईयर्स की एज में भी सफेद हो गए लगभग 70%।
0: क्या बात है, चलो कोई बात नहीं, सफेद हो रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो। सो सरांश, इंटरेस्ट रेट आप क्या बोल रहे थे, कितना इंटरेस्ट रेट है इसका?
1: हाँ जी, शुरू में अगर 2 साल का कोर्स है तो 2 साल तक ब्याज है 0%, 2.5 साल बाद जाके ब्याज है 2.5% पूरे साल का। मतलब $1,00,000 का ब्याज महीने का सिर्फ $200 है। और मतलब अगर आप पैसे नहीं दे पाते गवर्नमेंट को, आपका लोन डेफर हो जाता है। ये नहीं कि आपकी गाड़ी उठा लेंगे, घर उठा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसा लोन आपको कहीं नहीं मिल सकता है, लोन, लेकिन ऐसा लोन आपको कहीं नहीं मिल सकता। कॉल करें, अभी कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए।
0: सरश कोर्स केड़े केड़े ने थे कि ऑनलाइन ने?
1: मोस्ट पॉपुलर है जी बिजनेस का प्रोग्राम, 2 साल का है, फंडिंग आपको 2 बार आती है, डबल फंडिंग आती है, और फुली ऑनलाइन ने सारे कोर्सेज, एग्जाम्स नहीं है, इजी टू पास है। तो मतलब बहुत लोगों को असिस्ट कर चुके हैं, पीछे ना रहिए, फंडिंग हासिल करें, उस पैसे को इन्वेस्ट करें, ग्रोसरी करें, आपकी इच्छा।
0: वेरी गुड। एंड सरश थोड़ी किन्नी की फीस है?
1: काम होने तो बाद $199 फ्लैट फीस, काम होने के बाद में है। शुरू में तो कुछ है ही नहीं सर, हमें अपने काम पे भरोसा है, और बाद में क्लाइंट्स अपनी ईमानदारी रखते हैं, हमें हमारी फीस इंट्रैक्ट या कैश के रूप में ऑफिस दे जाते हैं। प्रॉपर ऑफिस है 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, आप आए, हाई क्लास जगह पे ऑफिस है जी। ये नहीं कि आप, लोग हमें कहते हैं सर हमारा पुराना एजेंट हमें टिम हॉर्टन्स पे कोट पैंट पहन के मिला था। हमारा प्रॉपर ऑफिस है, काम होने के बाद छोटी सी फीस लेते हैं, कोई मीठी बातें नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, कोई भी इसमें हेरा फेरी नहीं है।
0: वेरी गुड। नंबर है सराज द 4372643175 437-264 3175 से। सराश, हुण अजकल कैनेडा अमेरिका दे आपस विच जो भी लड़ाई चल रही है ते इकोनॉमी ते बैंक्स भी टाइट हो रही है ने, सो इस लोन दा दे उत्ते की असर है उस चीज़ दा?
1: अभी तक कोई चेंज नहीं है, बट यस, हर 2 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है एडुकेशन में। तो अगर आप आज इनरोल करते हैं, आपको पूरा फंडिंग आएगा। मतलब अगर हमने आपको 1.5 लाख 2 लाख का असेसमेंट दिया है, आपको उतना ही आएगा। बट यस, अगर आप, अब नेक्स्ट पॉलिसी चेंज गवर्नमेंट का होना है अगस्त 2028 में, तो अगर आप 3-4 महीने बाद आएंगे तो आपकी जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट से आपके खाते में डायरेक्ट आनी है, उसमें शायद थोड़ी सी कम आए ज्यादा आए, राइट, डिपेंडिंग ऑन दैट पॉलिसी जो अगस्त 2028 में आएगी। तो पीछे ना रहिए, जो लोग सेकंड कोर्स चूज करना चाहते हैं हमारे पास आइए, फीस सबसे कम है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, एग्जाम्स नहीं है, और मतलब कॉलेज की फीस भी सबसे कम है। तो मतलब ज्यादा पैसा हमारी जेब में नहीं, आपकी आपकी आपकी जेब में।

में चंपड़े और चनी में चंपड़े और खबाज आया बाज नहीं जोड़िया लोको पुत्रा बाज नहीं माया बाज नहीं जोड़िया आया बाज नहीं जोड़िया लोको पुत्रा बाज नहीं ना पाई मरे मां पज दी ओ जी दी ती मरे तिर जा ओ पाई मरे

वकीलों वाला झाड़ू तोड़ के आम आदमी पार्टी खिलाफ गुस्से का इजहार किया क्योंकि प्रधानगी लिए मुख्य मुकाबला एबीवीपी दे अंकित अते एएसएपी दे उम्मीदवार आदिल बराड़ विचाले रहा। कांग्रेस पार्टी का विद्यार्थी विंग एनएसयूआई प्रधानगी की चोण विच तीजे स्थान उत्ते रहा, जबकि पिछले साल अहम सफलता हासिल करने वाली सिख नौजवानों से आधारित जथेबंदी सत्त ऐतकी ज्यादा वधिया प्रदर्शन नहीं कर सकी। इस पूरे नतीजे नूं विद्यार्थी राजनीति विच ही नहीं सगों पंजाब विधानसभा चोणां लई एक महत्वपूर्ण संकेत वजों भी वेख्या जा रहा है। पंजाब विधानसभा चोणां विच हुण संभावी गठजोड़ां संबंधी क्यास राईयां होर वध गईयां ने। इस दरमियान पंजाब पद्धर उत्ते अकाली भाजपा गठजोड़ होवेगा कि नहीं, इस संबंधी भारतीय जनता पार्टी वालों हाले भी यही कहा जा रहा है कि वह अपने पद्धर उत्ते सारियां 117 सीटां उत्ते चोण लड़नगे। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर ते पंजाब इंचार्ज डॉक्टर सतीश पूनिया ने लंघे कल भी पार्टी आगुआ नाल बैठकां दा दौर जारी रखा ते चंडीगढ़ विच पार्टी आगुआ दी मीटिंग उपरंत कहा कि भारतीय जनता पार्टी सारिया 117 सीटां अपने दम उत्ते लड़ेगी। गठजोड़ दियां क्यास राईयां उत्ते विराम लाउंदिआं उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र की लीडरशिप का सुनेहा है कि पार्टी सारिया सीटां उत्ते अपने दम उत्ते मैदान विच उतरे। सुखबीर बादल वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल पिछले दिनी की मुलाकात संबंधी उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री दे नाल जेकर कोई मुलाकात करता है तो इसका मतलब गठजोड़ होना नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई केंद्र का हवाला दे के लगातार ये कह रही है कि गठजोड़ की कोई संभावना नहीं है तो भाजपा अपने पद्धर उत्ते चोण लड़न की तैयारी कर रही है। पंजाब विच किसानां दा रोस एक बार फिर नजर आ सकता है ते इस संबंधी वड्डे पद्धर उत्ते किसानां वल्लों तैयारी की जा रही है। दिल्ली विखे लगे किसानी मोर्चे की अगवाई करते रहे संयुक्त किसान मोर्चा वल्लों मोहाली चंडीगढ़ की हद उत्ते 7 दिना धरना अज तो शुरू किया जा रहा है। 1 तो 7 सितंबर तक मोहाली चंडीगढ़ हद उत्ते फेदा बैरियर नेड़े ये धरना दिता जाएगा। इस धरने विच पंजाब दे वक् वक् जिलों अते पिंडां तो वड्डी गिणती विच किसानां दे पहुंचण की संभावना है। किसानां नूं प्रदर्शन वाली थां तक पहुंचण लई वक् वक् रूट निर्धारित किए गए ने। धरने विच शामिल होने लई पंजाब दे वक् वक् पिंडां तो किसान ट्रैक्टर ट्रालियां ते ट्रकों तो इलावा बसा रेल गड्डिया राही भी पहुंच सकते हैं क्योंकि यह धरना 7 दिन चलना है। इसलिए राशन और होर जरूरी समान भी ट्रैक्टर ट्रालिया राही धरना स्थान तक पहुंचने की संभावना है। पिछले लंबे समय तो बकाया किसानी मंगा नूं लेके संयुक्त किसान मोर्चे वालों इस 7 दिन के धरने का सद्दा दिता गया है। उधर पंजाब विच एक होर थां उत्ते भी किसानों वालों रोस प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां ने किसानों दी मंगां मनवाउण लई केंद्र ते सूबा सरकार खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिता। उग्राहां जथेबंदी ने पंजाब के दर्जना जिलों विच डिप्टी कमिश्नर दफ्तर मूहरे अणमिथे समय लई पक्के मोर्चे ला दिते ने। इस दौरान किसानों वालों भारत अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करन, लैंड पुलिंग नीति रद्द करन, कर्जा मुक्ति, कारपोरेट घराने वालों लोगों की लुट रुकवा, जमीन की मालकी समेत होर कई मंगा जोर शोर चुकया जा रहा है। इस मोर्चे के पहले दिन वड्डी गिनती विच किसान नौजवान बजुर्गों ते औरतों ने शमूलियत की। इल्जाम लाया कि केंद्र ते सूबा सरकार किसानों ते मजदूरों अणगौलिया करके साम्राज्य मुल्कों के दबाव हेठ उन्हां दी नीतियां लागू करने की कोशिश कर रही ने। मालवे विच मौड़ विखे पिछले दिनी अचानक
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

0: Rashmeet Kaur at 647-539-4499. Akal Mortgages.
1: There are performers, and then there are legends. A voice that has defined generations, the one and only Rahat Fateh Ali Khan, live in Toronto. With Shah Zaman Ali Khan, Sunday, September 27th at Scotiabank Arena.
2: क्या बात है
1: माय ट्रू साउंड लाइव एंड सेलुलर पॉइंट रहत फतेह अली खान एंड शाह जमान अली खान लाइव इन टोरंटो फॉर टिकट्स विजिट ticketmaster.ca
3: ओहो सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी
4: ले आपा हुणे करदे आ संधु साहब ना गल ते करदे आ मसले दा हल
3: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधु नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ कॉल
4: 647-706-6640
2: और नाल दी नाल थोनों एक नंबर दे दिए जे तुसी घर वास्ते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वास्ते या तुसी बेसमेंट वास्ते अप्लायंसेस लब रहे सी रेफ्रिजरेटर डिशवॉशर्स स्टोव टीवी बिल्ट इन अप्लायंसेस तुसी ड्रीम होम अप्लायंसेस नु याद रखो 905-805-3000 ड्रीम होम अप्लायंसेस 905-805-3000 विजिट ड्रीम होम अप्लायंसेस फॉर द बेस्ट प्राइस बेस्ट डील एंड बेस्ट Gifts 905-805-3000 Argentia Road, Mississauga, Dream Home Appliances.
5: ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ
6: ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਰੋਟੀ ਸੱਚ ਹੈ
7: ਮਿੱਟੀ ਚੁਗਦੀ ਫਸਲ ਸੱਚ ਹੈ
6: ਖੁਰੂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ

सतगुर होए दयाल ते सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कबहू चूरी है, सतगुर होए दयाल ते दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल ते हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगा नूं मानदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़दी कला वाली शाम दे विच, खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधु। उम्मीद करते हैं तुसी ठीक ठाक होंगे, चढ़दी कला च होंगे, अज की खूबसूरत शाम नूं इंजॉय कर रहे होंगे। सुनने वाले सारे दोस्तों नूं, मित्रां नूं, भैणां नूं, भरावां नूं, साडे बजुर्गां शहनशाहां नूं, फुल्लां वर्गे चेहरियां ते रब वर्गियां मावां नूं बहुत बहुत प्यार सत्कार अदाब सत श्री अकाल ते नमस्कार।

ब्यूटी इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउण के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वे जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगु शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे ले तो हाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच ते डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो कि तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कोई भी कार वैन ट्रक का काम होवे तो याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर, रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस, जिथे कि मैं भी गड्डियां नूं लेके जाना रिपेयर दे लई। रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी काम करदे आ, कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल, सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है। स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक काम च, स्टील्स एंड मेलनी। रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 9057991478905-799-1478-1498-1499-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1 ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਵੀਂ ਯਾਰ ਟਿਊਨ ਚਲਾ ਤੀ ਗਾਣਾ ਚਲਾਇਆ ਨੀ ਸੋ

0: विविंटा 94 6478355294।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित, एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार। सारे ही नगर निवासियां नूं बेनती कीती जांदी है, भाई अमृत वेला हो गया, चार बज गए, उठो, इशनान पानी करो, गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

खोकर आया हूँ इंसानों की गलियों से, इंसानियत ना मिली इंसान ना मिला। इबादत के नाम के झंडे तो मिले, इबादत ना मिली भगवान ना मिला।

तेरे रूबरू एक दिन तेरे ही किसी अजीज की सिफारिश लेकर, मेरी तो तू नहीं सुनेगा मुझे पता है, वही आएंगे मेरे साथ मेरी गुजारिश लेकर।

0: Haldi Poncho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 905-451-2600. Hello, bro. Kithe hai tu?
1: Main client nu milne ja raha. Soch raha si Tim Hortons ch baith jaiye.
0: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unnanu. Private booths ne full privacy mildi hai. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
0: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी हमें कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600

0: Friday, September 18th, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: Pehla aaya si badi mohabbat dikhi, umeed kar raha haan. Is wari bhi tusi aashirwaad dogi.
2: Ve aaja do me naal nachiye, nachiye baah ch baah pa. Ve aaja do me naal nachiye.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: Namaskar, Sasikal, main aapka Khuda Baksh and I am very super excited to perform at Mata Ji Ki Chowki.
4: Maan tu badaya mera dukh saare taal ke.
3: On 4th September at Eros, the Convention Center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Harman. Aur main ye batana chahta hoon ki ye shaam music aur bhakti se bari hogi. Hum is दिन को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सब ने अपनी फैमिली के साथ दोस्तों के साथ जितने भी आपके क्लोज है सबके साथ आना है सो गाइस सी यू ऑन 4th सितंबर
5: मेरी किस्मत मां चमकाई
6: लो जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तो ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दिया चारों लोकेशन विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फेंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900
7: Hi, this is Harpreet Singh from Top Choice Insurance Agency. If you have any question about any insurance or investment options regarding, you can call and get information. If you have any life insurance, you can find out money back plan, critical illness, disability, visitor, travel, super visa, medical insurance. Number is 416-817-6500. This is Harpreet Singh, Charter Life Underwriter and Certified Health Insurance Specialist from Top Choice Insurance Agency.

0: जब तुसी भी फर्स्ट या सेकंड मोर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी

0: Designer sunglasses, eyeglass frames and large selection of contact lenses.
1: Get selected frame, regular single vision lenses for just $129. 35 Resolution Drive, Brampton in Walmart Plaza. Call 905-460-8888. That's 905-460-8888.
0: Serving from two locations. Best service, best price, Specs Express ke saath.
2: यार इना इंश्योरेंस ने ते धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
3: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
4: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
3: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
4: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
5: You're listening to Punjabi Versa Monday to Friday 11 a.m. to 12 p.m. For more information call 647-448-1000
6: Toronto's number one station AM 530
7: Punjabi Versa

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
1: मिल जानगियां बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले
3: मेरी सरकार
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
1: मिल जानगियां बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस

गुड आफ्टरनून, वेलकम टू देव टाडला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। वतनों दूर 1 बजे तुहाडे लई पेश किया जाएगा। हुण तो लैके 2 बजे तक साडे स्टूडियो दे नंबर रहेंगे 9057990999।

0: insurance for you.
1: 416-509-1509
0: or visit insuranceforyou.ca.
2: The wait is finally over. Gordy Kumin of REMAX Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at REMAX Gold Realty to book your unit today.
3: Qataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, the Pal de Vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options, Sono Chai de Ne, Jan to see visa services, the Pal de Vecho, Puri family vacation upper Jan the Sochrine, Jitthanu all inclusive vacation packages, Pimil de Ne, Ponchna Maji, Qataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper, call Kar Sakdeo 905-678-1200. 905-678-1200 Qataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of Perth.
4: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
5: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन, इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 905-460-8888. दैट्स 905-460-8888.
4: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस.
6: आज खुश तो बात होगी
7: ओ ता होना ही है जो तुटी नो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे तई नकदा बन दई
6: है आज मेरे पास बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी
7: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नु वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिए चल
8: क्या रहे हो पर
7: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
9: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
7: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillobideo.com होर कोई सेवा
10: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157
11: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां
12: What's up everybody, this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर

0: करो 6475041557 या मैसेज करो पंजाबी लहरां दे इंस्टाग्राम पेज ते।
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
2: SNS Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही SNS Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
0: जे तुसी किसी बिल्डर दी अग्रीमेंट दे विच फस चुके हो, तुसी घर लै लिया, हुण तुहाडे तों घर क्लोज नहीं हो रहा, तुहानूं डर है कि यार बिल्डर तां साडे मगर आऊगा, सानू डिपॉजिट तक नहीं मोड़ना, फिक्र ना करो, कॉल करो तुसी जे गिल होरां नूं, कैनेडा बिल्ड रियल एस्टेट एडवाइजर्स दे नाल। इह तुहानूं गाइड करनगे, कंसल्ट करनगे, टॉप दे वकीलां नाल काम करदे आ ते तुहानूं बिल्डर दीआं अग्रीमेंट्स चों छुटकारा दिवाउंदे ने। इन्हां ने बड़े लोकां दी मदद कीती है बिल्डरां दीआं अग्रीमेंटां कैंसल करन दे विच। डिपॉजिट भी इन्हां ने बड़े लोगों का मंडवाया, थोड़ा भी डिपॉजिट मंडवा सकते हैं। एक बार कॉल करके अपना सिचुएशन डिस्कस करो। बिल्डर तो प्रॉपर्टी ले ली, हुण क्लोजिंग नहीं हो रही, तुसी फस चुके हो, एक बार इन्हां नूं फोन कर लो, इन्हां नूं मिलन दा कोई कॉस्ट नहीं। नंबर है 6477-716-1987। जे गिल, कैनेडा बिल्ड रियल एस्टेट एडवाइजर्स, 647-716-1987 नंबर है।

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: किसी ने भी अगर कार वैन एसयूवी लेना टॉप टॉप टॉप का नाम एक है वह है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला और करण शर्मा नू कॉल करो। नंबर वन सर्विस, नंबर वन रेट्स, प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल। सो कार वैन एसयूवी कोई भी लेना हो एरन मिल्स एक्यूरा 905-828-5800 905-828